संसार और नागरिक समूह को सीमा तोड़ते इस प्रकार के लिए आयोजित बाजार नीति

0: विचार अनुभव की कमी न हो, पढ़ाई को ध्यान दीजिएगा, शुभ चैनल
1: रफ्तार पता मुझे बहुत लाभ का साग पात दाल खुड़िया आरा मच्छी शिकार को फल फूल आयुर्वेदिक खाना नियमित रूप खाई,
0: जंक फूड कम करी, संतुलित खाना रोजी।

संतरी खाना खाई व्यायाम शब्द करी धूमपान मदिरा मजे दूर रही तर भर अध्ययन करी आज निर्णय कार्य जीवन चार निशाना रोगों से बाजी स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो गुरबाबा एफएम का सहकार्य व स्वास्थ्य कार्य ने प्रत्याशी दलित प्रचारी संदेश

0: सेवा प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता खाती व्यवहारिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वसुलभ रूप में चिट्ठी यहाँ कहीं को स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पहल ऐसी कौशल अस्पताल बाजपेयी में संपर्क करना हार्दिक अनुरोध कराती
1: अस्पताल ऐसी सेवा
0: चौबीस घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार कराई
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे ऐसी संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर ऐसी प्याज छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच करेगा
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हार्ट जोड़ी तथा जनरल सर्जरी पशु की सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध बा सुविधा सम्पन्न लैब को सेवा उपलब्ध बा प्यारालाई शिशु को मुख दान बिना नशा ताप गलक हाथ कड़ा अन्य चलना बिरामी मुखन फिजियोथेरापी तथा एक्यूपेशनल थेरापी विधि बसे उपचार कैदा
0: नशा ताप गलक बिरामी मुखन के बिना ऑपरेशन फिजियोथेरापी तथा एक्यूपेशनल थेरापी से सफल उपचार कर जाए
1: 24 घंटा एम्बुलेंस का व्यवस्था कैदा असहाय नागरिक एक महिला अनाथ बाल बालिका अपांग ज्येष्ठ नागरिक उकलपुर सेवा में 10% छूट के व्यवस्था कैदा कौशल्य अस्पताल प्रणाली बांसगरी शाखा 5 बांसगरी बर्दिया पुरान पेट्रोल पंप दक्षिण पाजर
0: संपर्क फोन नंबर 084400192 हो 084400210 बांसगरी बर्दिया संसदीय पुरपुर 11 94

0: साथी को दबाब में होइन आफ्नो सपना को पक्ष में निर्णय गरौं
1: तनाव भए खुला कुरा गरौं समाधान लागू पदार्थ होइन
0: लागू पदार्थ बाट टाढा बसौं स्वस्थ र उज्यालो भविष्य बजौं।

0: সময় ভবিষ্যতে সুস্থ জীবন আপনাই নিজগারক ঘটনা জীবনের জীবন ঘটাবি সন্তুলিত খানা খাই ব্যায়াম শান্ত করি ধূমপান মদিরা মধ্যে দূর রহি তারা নিয়ন্ত্রণ করি আজ নির্ভয় কাহিনী জীবন যাত্রা নিজগার রোগ বসে পাঠি সুস্থ জীবন আপনাই রেডিও প্রোগ্রামের সঙ্গ সহকারে এবং স্বাস্থ্যকারী বর্তি আছে জনৈত্যদারী সনিল
1: विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा 30% वयस्क जनसंख्या उच्च रक्तचापको जोखिममा छन्। प्रशोधित तथा तयारी खाना जंक फूड तथा डिब्बाका खानामा सोडियम धेरै हुने हुँदा मुटु रोगको जोखिम बढाउने गर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले एउटा व्यक्तिले दैनिक 5 ग्रामसम्म नुन सेवन गर्नु उपयुक्त हुने सल्लाह दिएको छ।
2: नियमित रूपमा हिँड्नु र शारीरिक व्यायामले मुटु स्वस्थ बनाउन मदत गर्छ।
1: सन्तुलित भोजन पर्याप्त निन्द्रा सकारात्मक सोच एवं चिन्ता र तनावबाट मुक्त रहँदा मुटु रोगबाट बच्न सकिन्छ।
2: 40 वर्ष पुगेपछि

0: स्वास्थ्य प्रति हामी बद्धता काटी मेरमिरिक स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभ रूपमा वृद्धि अहिले यहाँ कानपुरमा स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक पहल भएकाले कौशल्य अस्पताल बाँसमेडीमा सम्पर्क गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
1: अस्पताल सेवा
0: 24 घण्टा डाक्टर के प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचार गराउँदै
1: प्रत्येक दिन बिहान 8 बजे से सन्ध्या 6 बजेसम्म विशेषज्ञ फिजिसियन डाक्टर से प्याज छाती कलेजो नसा मुटु चेक जाँच त्रिविधा
0: प्रत्येक दिन नसा तथा न्यून सर्जरी हात जोडी तथा जनरल सर्जरी प्रसुति सेवा नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा चेक जाँच गराउँदै
1: 24 घण्टा डिजिटल एक्सरे भिडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भए सुविधा सम्पन्न ल्याबको सेवा उपलब्ध भए प्यारालाइसिसको मुखबाट बिना नसा ताप बिना हातद्वारा अनि चल्ना पेरोमेमुखबाट प्याज फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्सर थेरापी पिडी मसिन उपचार कैजिठा
0: नसा ताप पिरोमेमुखनले बिना अपरेसन फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्सर थेरापी से सफल उपचार गर्दै
1: 24 घण्टा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेकी भए असहाय नागरिक पेपर महिला अनाथ बालबालिका अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक पूर्ण सेवामा 10% छुटके व्यवस्था गरेकी भए कोशीले अस्पताल प्रणाली बाँसगढी शाखा 5 बाँसगढी बर्दिया फ्रन्ट पेट्रोल पम्प दक्षिण बाजार
0: सम्पर्क फोन नम्बर 084-4-00-192 04-4-00-210 बाँसगढी बर्दिया संसदीय फोन नम्बर 1 4

गरी प्रणाम केलाजी साग सब्जी फल फूल सहित खानाले बच्चा खाना तन्दुरुस्त भने पूरक खाना सँगसँग दुई वर्षसम्म स्थिरता जाएछ नि।

कई प्रकार के अनेक बड़े स्मोक कार अंग्रेज और मोटारों कारों या डबरों कारों की तरह तेरा कई बार सिफारिश तेरा आएगा भाई तो मैंने बहुत सरसर बात तेरा अवश्य उत्साह करे कुछ वो आए तेरे सुपर और तेरे छापा का तो सिफारिश आएगा उपचार मैंने सुपर उपचार तेरे से कुछ ना घाव खतरा दस्तों सुपर घाव खतरा भाई मुझे समय घाव खतरा आलमना खाई है तू अवश्य उत्तर बोलने को तू दस्तों भाई सुपर भाई का बोलता हूँ भाई का बोलता हूँ कि मुझे नाचने का जो अवश्य उत्तर चले आना प्रियर का भाई सुपर भाई को समय दिखे को तू मेरे को पन्ना अमृता मंदे पांचवासी चियासी जब सब अट्ठाईस अंकारते धारों से छियासी एक सौ अट्ठाईस अंकारते बीस अट्ठाईस उन्तीस अट्ठाईस हो मैं एक पटक सेवा करने

नजीना मजे तुरंत ही तरह भरा नियंत्रण करी आज उपचुनाव का निर्णय रोज रहा।

केवल मैं बना सकता हूँ क्योंकि यह ऐसा था कि जो रास्ता यह सिटी पर भी रास्ता नहीं हो मैं फिर हो बहुत बड़ी चीज हो फिर बहुत प्रकार की हो लेकिन उन्होंने 10 प्रकार 7 में कहा।

ध्यान सुबह 6 बजे हमारे संदेश में अपना स्वागत बानु हम कुमार रेडियो प्रभाव एफएम पर दिया से उत्पादित हमारे संदेश को दिया और साथ ही एफएम राजापुर बांके का रेडियो प्रतिबोध एफएम कोहलपुर रेडियो हाथेमारो चांदी गांव पालिका बांके अतिरिक्त संप्रसारण बीच बा हमारा संदेश का अधिकारी मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक में से बांसुरी चार मछाला संबंधी रोग का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर होना बांसुरी का 40 बहुमत देश तथा इसी मर्मकालीन श्री भाष पुरस्कार से धारण जी पर्याप्त प्रसारित विभिन्न प्रक्रिया में असार 22 समय 50% धान लगाए भर्तिया में 2,00,000 अनुसार छिका पाठशाला परामर्श माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ऐसी पूरक परीक्षा का नतीजा सार्वजनिक प्रधानमंत्री शाह एडीबी का अध्यक्ष कार्य बीच सिंह दरबार में भेंट वार्ता पूरा समाचार बांसुरी नगर पालिका वा नंबर 4 मछाला रोग प्रक्रिया में खराब निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन विभिन्न स्वास्थ्य कार्य प्रक्रिया का आयोजन तथा बांसुरी नगर पालिका 4 पूरा कार्य का समन्वय में संचालन बिना शिविर काल 24 घंटे मतलब 9:30 बजे से मठुआताल स्थित आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र में संचालन विभिन्न आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र मठुआता सीनियर लाल विश्वासी के अनुसार शिविर में छाला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक से छाला संबंधी सकुमेरिक परीक्षण परामर्श तथा आवश्यक बीमारी शुल्क देना समय बताया प्रादेशिक कृषि प्रसाद पासवान सामुदायिक सकुना शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण करा कदापिकरण आयोजक अनुसार शिविर का मुख्य उद्देश्य छाला रोग का प्रभाव कार्य प्रचार संग समुदाय में नुक्कड़ कुष्ठ रोगी का पहचान कुष्ठकर्ताओं को समय में उपचार सुनिश्चित करना हो इनमें से कुष्ठ रोग का कारण विशेषता जटिलता न्यूनीकरण करके रोग निवारण अभियान का प्रभावकारी बनाकर शिविर का आयोजन कई लक्षण के बाद बांसुरी नगर पालिका 40 जना युवा भूखन 390 घंटा के इलेक्ट्रोनिक्स फिजिक्स फ्रीज तथा एसी मर्मत तालीम दिलाता करीब 1.5 महीना समय संचालन तालीम

del trabajo, carneca, alzar y demostrarle el carácter por el fin a plasticarle fin a pánico por todo el problema con la salud y con la chema se pone sotso fin a pánico se las puedo solicitar con la caja para permitir carne de la carne carne en carne y la fábrica de por día yo no quiero hablar. राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसए 2082 का ग्रेड तृतीय अर्थात पूरक परीक्षा पर रखे जा सार्वजनिकरण का कोशिश आधुनिकरण मंत्री के अनुसार परीक्षा में 129,114 जना विद्यार्थी सहभागी हुए अपना 83,523 जना उत्तीर्ण अपना समय के लगभग एक कोर्स सहभागी का 64.69% और जीपी अनुसार सबसे ज्यादा 51,436 विद्यार्थी 2.4 से 2.8 समय जीपी प्राप्त करता था दो नतीजा में चित्तनी पुस्तक से कलाइन बोर्ड से प्राप्त की तरह ऑनलाइन से आमदनी से व्यवस्था

சதன் பார்த்த பட்ஜெட் பாரிட்டு மைசூர் இஸ்தாத்தாலே அகமி அதிக் வசத்தர் தரிக்கும் வெளியுதுனாரும் கடுதில் கவி கவினி அதர் பார்த்த கவிப்பசா सरकारले खानाको व्यवस्था नगरेपछि भक्तपुरको कविपाटी स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा बसिरहेका सुकुम्बासीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङका अनुसार

स्वीटिंग रात्रि 8 बजे सीआईए भारत पर डिस्ट्रीब्यूट कार्यक्रम हिंदुस्तान।

सही जानकारी पाएगा और नगर उपचार केन्द्र खानपान रेखा प्रसाद अनुसार आधिकारिक नेपाल डट ओआरजी में जाकर आवश्यक जानकारी लिखने क्षेत्र था। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण आशा

ज्यादा फेमस सफर है स्वास्थ्य कार्ड में जोड़ दिया से हम इतना जारी समझे

0: किशोरी अकत कमी अर्थात रफ्तार कटाते पर्व
1: रफ्तार कटा विलसी सतो टटकर आवनगर चकड़ेगा अनुहार से कबीरा उपाय में ध्यान दीजिएगा
0: रफ्तार कटा से बचत लाख का